यह आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं एफएम सवाई 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्यार श्रोता, मैं हूं आपके आरजे नुबई। और जी हाँ, आज के दिन फिर से आप लोगों के साथ बिताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे और मैं जो गीत आप लोगों के लिए प्ले करूंगी वो सब आप लोगों को पसंद आएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:21 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 10 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी के बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। अगर आपका मनपसंद गीत होंगे तब भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे सबसे पहले गीत की ओर। और हमारा सबसे पहला गीत होगा अनु मलिक और श्रद्धा पंडित के आवाज में, चुरा लो दिल। तो आइए सुनते हैं चुरा लो दिल।

तो जी हमें प्यार श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा सनमपुरी और जुके बिनी की आवाज में, साथ रहे तू मेरा।

माफ कीजिएगा मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा अपना बना ले।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था केसरिया, और ये गीत जो है ब्रह्मास्त्र फिल्म का गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की, और उसके बाद हम सुनेंगे हीरो नंबर 1 जो गीत नाते पाई ना रिक्वेस्ट मा। तो मुझे वाला साई लव किया और से गुड मॉर्निंग आरजे का ऑफिस का थेन वे ले का रुनलू नाला इन लव प्ले इन ले तो ओम लो मुझे बस तू ही तू ती दिखा इरोन प्ले थे जवान ओ दिवती जोंग जोंग ले गाई था तू जोंग जोंग तान करोन ठंगे अरोन तिया कन लव जोंग अंगा कन हो जोंग कन प्ले ने तो निया तो मा मुनि राम लो थिया ना जे नुबो केसरिया आखा मिर्शे छुआ के मुर्शे छुआ चियांग पखत पोर्शे छुआ कदू वे चियांग ए खुआ लुम चुआन मो मिशिंग जो की कूल आ ओल तो कमा से नंग चू कूल वे मे असु ओ रंती कूल दोन लो रैंग स्नोम लो फेक मे यंग ती हो चर चर दोन है तु ना पो हो ची लीर करों प्ले दोन। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारा अगला गीत होगा तू मेरा हीरो नंबर 1, और ये गीत जो है ये उदित नारायण और पूर्णिमा के आवाज में है। तो आइए इस गीत का ना आनंद लेते हैं और सुनते हैं हीरो नंबर 1।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था हीरो नंबर वन और इस गीत को चुना था के गई थे अनिलो के गई थे अनिलो हाँते पा बिल्कुल क्लियर, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, आपके नाम जो है एक ही जैसा है इसीलिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और हम ढूंढ रहे हैं आपके गीत जो आपने रिक्वेस्ट की थी बस तू ही तू, लेकिन सुनने से पहले हम आपके संदेशों की ओर नजर डालेंगे। गुड बॉय यार आरजे नुबई वही चु खुआ वजिया उमरी वे नेक्स आरजे ते आरजे सांग सांगे आरजे एने ते आरजे स्पार्कल पीसी जिसका गुर साइलो वी कुंग ते हाकते पा उमिगा सांग ते जानिन अगस्त बॉय मिंग मोई ते अपार पारी पुलल दिन पुया फल कौन वेंग लाई माह मुनी अंतम लुतुगन वाई तान नि मेरो से अरन तिया गन वहन लोम छिन तकेम अंस वाई तान गन तियां तिचो माह मुन रम लो थियान आजे नु बॉय सोना कितना सोना है इंट्रो खाकदु अमिजो चुन थन थन थन थन अति कनिंगा कनिना सलुत तो करंती ओ मिला दू वे ते मम सोना कितना सोना है मा न्याम। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत के और हमारा अगला गीत होगा बस तू ही तू और इस गीत को वाला साइलो है ना रिक्वेस्ट नहीं तो आइए सुनते हैं बस तू ही तू।

जी हाँ मेरे प्यार श्रोता, ये गीत था बस तू ही तू, और इस गीत को वाला साइलो ने रिक्वेस्ट की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत सुनने से पहले हम चलेंगे गुड बॉय के संदेशों की ओर। नुबोय आजे लोमते नेन कलौ थन सख लौचे उदी के छुक लल आ हाउ तो मिन थन सख वेक तोरा हा कन गाय तप मै नि खांग का चुमो रन लमते लो मौला कन तेल वे वेक तोरा कन गाय क्ल जेल ने आ आ इचियर ये ते कलौ आ तेल लो अंगोर ओ इचियर ते लो अंगोर हेतला हि का का से इजी आ हि का छियर थे इचिया लो मिलो से थेमला चमवजिया लो थिन तक तुनांग आ ngai thamek zong song tan a vai vai in o ni zan in khel ka en kuit kamuta chuak tan kata kathan an chak bok aron ti a ni zan in khel en ho kha chu muta chua a huna ke chu ka en lo mo ma to ka mut kham lo kha ka lo wa kha ka mut ta ya chu wang chan in a en ho zong kha chu a ye menawa har ven ti de sap sap reng me yamam chanin wala sai lo hian a she kalom lu tu ke ladang khan tur ka she tre umidang ten han thlang an thlang ve du om sia in thla ka in thla shung deu to te e in thla shung reng reng su in du zong kha churan thlang ve por por ro to me me hamara agla git hoga सुनो सुनो कहो कहो कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, ये आप सभी लोगों के लिए है।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रद्धा, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था सुनो सुनो कहो कहो, और ये गीत जो है ये उदित नारायण की आवाज में है। अब हम नजर डालेंगे आपके संदेशों की और मामू राम लोथिया नारे नुभ के चिकला दो इशिया आ नंग मा आ का इन नत के चू जाने न तान के इन खे खल Come on, England, kan tia ngaran tia. Mamu ni nian hi jang kan du hi ain ang clubs mahi ni. Tira kan che lau ti zong po in ang mom kan choice po in ang atu vang chanin. Ani ju asan pa run tan ve vak ka ngai lau mom. Tu ji ha me piara shata mujhe yaha mila hai ming moi tia ki aur se ming moi tia han. Nu boi namaste diu ti nuam le aran tia. Aap kabhi hamara piar bhara namaskar. Chorin nguri sai lau hi ane na jay nu boi isak me na kalau lom. मच्छे अरुंतिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और केचू हिंदी ही थंग वेदोन मईला थन तुर कशे म्या लवनिया मिंग मोइते करिंग तप अरुंतिया ngatge थन तुर शियत लो इन नलती जोंग रन सोइवे पप पप मई तुर तो चने वाला साइलो हियानिन

तो जी हाँ, मेरे प्यार श्रद्धा, कैसा लगा आपको ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था तुम हो तो सैयारा फिल्म से, और हेता रिक्वेस्ट कन्नई अफांग यानी अल्लाह रिक्वेस्ट ही कन सोंग मे का कन लमुरी लवा कन मुवे कन हम प्ले यंग। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं अभी, तो अगर हमें ये गीत मिलेंगे तो हम आपके लिए प्ले करेंगे यहाँ, लेकिन अगर ना मिले तो हमें माफ कीजिएगा। तो जी हाँ, हम ये मेरी जिंदगी का जवाब अत्या इधर

हमारे यहाँ नहीं मिल रहे हैं हमें ये गीत। अगर आपको दूसरा गीत मालूम हो तो फिर अगले सेगमेंट में भेज दीजिएगा। और कुंते ह्याने ने मामुनी चु आई खे खल बोका जाने चु अखल नो थे अखल दोन मामुनी का मो जाने चु खल ट्रंक्स ट्रंक्स दोन लुटु का चु वांग जाने इन लो इन लो दोन ने जेल जा महित चु तिंगे वॉइस इन रन थोनो वॉइस का चु चेयर हर दोने आजे नो भाई मो क्वाई नजर बोका दुआया omhar kevin lamami atong pe viau donia don ni in kashia adam chung zong nga tong le thei to lo turin ka siam don enge ka ti thei a she ma yang ran ti kung te ingam nge ngam lo gan enang ti kha chuan mom kung te khan in angam chuan aron chang nge nge don ni तो जी हमें प्यारे श्रोता इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा धूम धड़ाका। इसी गीत के साथ इस खंड के लिए आप सभी लोगों से विदा लूंगी और फिर लौट के आऊंगी 11:20 पर। उस वक्त मैं इससे भी खूबसूरत गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुभई की ओर से बाय बाय विदा नहीं बाय बाय अपना ख्याल रखिएगा। तो आइए सुनते हैं इस खंड का हमारा आखिरी गीत धूम धड़ाका।

नमस्कार आप सभी लोगों को आपके आरजे नुबोई की ओर से फिर से यहाँ दूसरा खंड में स्वागतम। और जी हाँ, इस खंड में मैं आप लोगों को आपके पसंदीदा गीत सुनाऊंगी, पुरानी भी नई भी। तो हम शुरुआत करेंगे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म के गीत से, और गीत की बोल है आते जाते। तो आइए सुनते हैं आते जाते आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था मैं फिर भी तुमको चाहूंगा अरिजीत सिंह के आवाज में। दुआइन अमुआ मामा तेरा मामू निरम लोथ खा अलो मुथु मनंग तीखा कन लाव ने चुमम चुफांग चुआन इन आया लनल खा प्ले से कन लाव तुमंगा जब मामू ने पोहा हर के को का लो ओम थे नान मम। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और उससे पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की। और तो चाहिए रव खोल सिंह यहाँ कलव लुद वे थो आर जे नु बम छाएम नल देव देव लव प्ले रो कलव गाय छवे जेल एर रंती कन वहन लोम छीन तक एम हे नल देव देव रोम प्ले जेल कन तुम ओ इन इन रील रेम जो खतियाम चन झेल चम हियन आर जे नुब आर जे तीना इथन गर गर दो नमो चुती नि चन इ सेगमेंट हि कंगाई खपे ले कछुक दई तें कंछुक दई तें नेक्स्ट सॉन्ग इतानी लव।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था लव आजकल फिल्म से और गीत की बोल है शायद। ये गीत जो है ये मुझे बहुत पसंद है, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी पसंद आए होंगे। मामुनी रमलो थे अनार्जे नुभय अनल अनल कलुंग अति लेंगे अरंती नल चियांग नि हे लाई चतिरा चानिन के वाल ही अनार्जे नुभय सुंदर और प्यारी तुम्हारी बहुत नल्लुतुक नल्लुतुक, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। चानिन एल बी रन थे यानी नार्जे नु बैलों आई थे रेंग चेन या यो ही अब था जाइपो इथियाम गो तंग रंते जाइचु का थियाम म्यालोनिया का नील ट्रक इ प्ले लिस्ट अनल सी अ पोंग टू ओ था मोय बॉक्स सी नेक्स्ट सी तान ले ड्यूटी पुई ने निन तान अरंतिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल बी रेन थे चुआनिन। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा बिन तेरे आई हेड लव स्टोरीज फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं बिन तेरे आप सभी लोगों के लिए।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो गीत था बिन तेरे, और बहुत ही खूबसूरत गीत था। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा सिम्बा फिल्म से, और गीत की बोल है तेरे बिन। वो सुनने से पहले हम पढ़ेंगे आपके संदेशों को। जेल अल्जाम ही अलालुंग ओ थे रेंग रेंग लव निम आजे नुबई पथियान थु इन मेल माते मंगई तुर ले इन रेम तका खुसहाउ दियाल दियाल तुरा मिन्ती ही आहार थी नी अरंती हरिति मई मई नि का नंगले अर्जेंटीना नंगला अर्जेंटीना फैंस निसिया चु वांगिन इंग्लैंड फैंस अटंग चुआन लथन सख चु लौ बैसे सांग वक लौ मई रो अरंती आई हा बैसे लौ लौ लौ अंग चे तुन चंग चुआन कपनी

इङ्ल्यान्ड फ्यान्सहरूको पिसिजिसका हाना जेनु बैची बहिनी मन्नुवाम ओ नेक्स्ट खा इन पथुम तान ओ अरदिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिसिजिसका यी कनिन तोङ खान बोक्स्या तर चनिन मिङ मै त हेर्नु भई तान लेक बुला पेक तान अरन्ती मिङ मै त तान ले पेक तान कन्ती बोकङ गुड बोय हेना जेनु बै कलो ओम चर चर अफ इन्चु खुवा ठदेऊ र हे चुकन छियार तो इनका से आज आज छुन थिल लो ए था उला लोम ते ले ते ते नेन खान रन ते ए रन ए थांग इन ए दुर खम लो मु ले ला तो जी हमें प्यारे श्रोता हमारा अगला गीत होगा रणवीर और सारा अली खान के फिल्म का गीत गीत की बोल है तेरे बिन सिम्बा फिल्म से।

तो मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, ये था सिम्बा फिल्म से और गीत की बोल है तेरे बिन। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और इनसे अनुआम ले मैं तेरा SMS कर दो चार चार कहना दोन लो ही चान मो अरे रुई जेला तो जम भी कुंते हैं ने नार जे बुई नू निचिन खान जेल सा मखान खा गम लो मिन तिदेव नी इन कशिया आते ngam lo ti deu po ni lo irun chan wat kha ka pe se mo ma se run chang lo wa england a lo chan ve ker ker chu ka thin a ke zak mai in england fans a tang in no bo mai ka cha khop mai a run ti e jelal za ma kha england fans ru kol mai ni la a thing ni kha thing a अच्छा न पेना खाओ मैं ते चाने के वाला ही अने आरजे नू बोई न कि ना पीसी जैसिका ये करीम दोन इफलंगे मरंती एप्पल तेरे ये पीसी जैसिका ही अने रेम तींगे मो लवरीम ला चामिन लव बियाक पोक दोन ने आ चाने गुड बॉय ही अन मिम बन चुम ले केले एक चाना वेलिन कनी नो पुआर मई दोन ऐ ऐ वचाक ओम वे मिम बन चुम चु lamkhuang min na om bok ei veng a yem atia ei zo zo lamkhuang chu ma se lamkhuang hi chu ka ei tam lo chen chu ei hei ei so la la om em wang hiam ma next arje enet arje sparkle arje te te arje sang sang ye arje bize ti te le argentina fans te tan big big o arantia argentina fans le england fans ka vo in chu kan in bakka yang ti lom khop mai tera तिचानी ना भामा के बरेंगे जब वे मैट फिल्म के गीत से और गीत की बोल है तुमसे ही तो आइए सुनते हैं तुमसे ही।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था जब वे मेट फेम का गीत, और गीत की बोल है तुमसे ही। ओ वाला साइलो हियाने हेलो आरजे इप्ले या इलाप्ले ही एंगलांगे अवन नलवे कलंगाई खलंगाई मिया लो अरंतिया तू न कंप्ले खा जब वे मेट फेम मिया निया लतो चु तुमसे ही नल तो कहे लाई के पोगंगाई खा मुसक पेर पोहन नल कटिंग हाल तो पमम। तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, वी कुंते हैं निचिंग हाँ करों चांग मन तो लो मिनी तुम वेल चवा उम तो सी या फोन कॉल का लो दोंग जुई ले आ कन उनाव पाने न चंग इन दार कार खत चुआं कन इन बिया तु ना चंग जेल जाम लका दुआं था लिन करों चे रों चे चार चार रो जेल जाम लका खान वहीं चु मिन मेल मातलत करील रो नतलत गुड बॉय हियर इंगे ही अतला आतलं वादे ते खा तीना तितमई इला आहादम थाक फियान जोक ओ मसिन उज्बेकिस्तान ते पो अरंती अनि ते चोन इन मा मुनिरम लो थे नार्जे नुबई तुम से ही कदु तप अरंती कंदु इन अंकती खमम मा मुनि ही कंदु ही लो इन अंसे mai ni jelo sama na arjenu boy tun tum chu i segment big hi chu ngai thalau ta pila him berdon in kashya a zanin zanlai pel nu shet a kan in khel don si ya kan in khel don no ma se ke tu chu tin aru kolo kan velo mo ka tan ve sakya hanem atan thua chanin itali ka tan berma se मसे कंतियंग। तो जी हाँ, हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा जर्सी फिल्म से, और गीत की बोल है मैया मैनू आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ, मैं प्यार श्रद्धा, ये था जर्सी फिल्म से मैया मैनू। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं इस खंड के लिए, तो आप सभी लोगों से विदा लेने का फिर से समय आ गया है। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा रस्तम फिल्म से, गीत की बोल है तेरे संग यारा। और इसी गीत के साथ इस खंड के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी, फिर लौट के आऊंगी आज दोपहर 2:35 पे। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM ज़वाई।